0: नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती

0: गोरखा रेडियो हो।
1: आज अपने फेर आवेर में मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी जुनकिरी बिचारा अलसम मले बात पर ही बसी गोले मो बजे कस्तो खत्म जी बने दिल दार दगर माते रहा तो मले ये ला ओ पोस्टी गया मेरी बुढ़ी बुढ़ी बंदा रिश्ते ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू माय सातो पुतलो फ्लाइंग आफ्टर सी यू अंग्रेजी बुझ्दैन तलाई देखेर सातो पुतलो उड्छ भन्या क्या

मोबाइल लड़े हो तो खोला बंदे जो आप ढोगे छोड़े दिन जो संजय दुखा दिन जो यार मोबाइल लड़े दिन जो गुंडर सिंह छह मोबाइल